0: seven people are busy with their own mobile.
1: Okay.
0: And sitting there, some message he is sending, one of them is giving a post, the second person is giving a like comment sitting there itself. But what is happening due to this concept, the interrelationship, physical relationship is getting disturbed.
1: Okay.
0: So this is not a good thing to be entertained. Okay. So, but people are doing it.
1: Okay. इसके ऊपर काम करना चाहिए. तो सर मैं फिर से एक बार आपको 1991 के जर्नी में लेके जाना चाहूंगा. आप कैसे ब्राइट स्टूडेंट थे, सीरियस स्टूडेंट थे, कैसे थे?
0: I'll add one thing. When I came to join Osman Engineering College, I came with a hope that the principal has told that if he is getting a push, I didn't get computer science, I got electrical engineering. The principal has told my father that if he is getting a position in the first 60, he will be shifted to computer science.
1: Okay.
0: So from day one, I had if I would have not got computer science, I would have not continued here, I would have continued somewhere else. So my first year was to get a position within first 60. And fortunately, I got third position in first year.
1: Okay.
0: So I got computer science and that continued. Maybe in second year, today, Maskar sir introduced his wife that he used to get first position. I corrected him, not first position. I used to take a position between 2, 3, 4. Yeah. And finally, also in that way, I left.
1: So you were quite serious with your friends?
0: I was having a very good relationship.
1: पर्सनैलिटी से थोड़ा मैं थोड़ा सा
0: आई वॉज हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन एंड द लोकल गाइज.
1: ओके.
0: एंड बट फॉर दैट रीजन आई वेंट टू अटेंड द एल्युमिनी. फ्रॉम देयर आई हैड कम ओवर ओस्मानाबाद टू सी. एंड दैट टाइम देयर वाज नो अदर थिंग एट ओस्मानाबाद. सी इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड ग्रुप, यू कैन नॉट spend time at Osmanabad. So you have to have a good relationship. And we in the last 4 years, those 4 years, we enjoyed what not.
1: Okay. Okay.
0: And the bonding that we got today also, many when I started posting my photos from college, there are a lot of phone calls that you take that photo, you take that photo, you try to meet him, you try to meet that, all those things. So this is what the students bonding with Osmanabad Engineering College.
1: Okay. और जैसे कि उस time cultural activities होते होंगे तो आप उसमें participate करते थे या फिल्में देखना ऐसा कुछ होता था?
0: फिल्में तो यहाँ हॉल फॉल नहीं था, एक हॉल था आई थिंक ये, बट देर आर टू वीडियो हॉल्स.
1: Okay.
0: One is called Chapne, one is Balaji. Okay.
1: Yes.
0: So we were attached to that. Whatever movie we used to tell him, he used to put those. Yeah.
1: Okay.
0: And there was again some movie hall was there. And one day, Pankaj sir has told in our class that I had seen Phool Ek Phool Do Maali 16 times. Then I took a challenge, sir, I will see another movie 17 times and then I'll tell in the class. Okay. And there was a movie called Sajan.
1: Okay.
0: So I saw it 17 times and I told Pankaj sir, I crossed your broken ear records.
1: Okay.
0: Which movie? I told Sajan. So the 17th time when I saw it here only in that hall. Okay. So that day. That was.
1: Our cultural activities.
0: Cultural activities. Though I don't used to participate. There are from our batches. There are singers like Prasanna Mahapatra, Jetli, Siddharth Jetli, and some local. Satish. There are a lot of people having such activities, and used to have good. All together. But one thing that we miss. And today we are missing it. That time we are not having mobile phone.
1: Okay.
0: I think very few have cameras.
1: Okay.
0: And we didn't have photos many. So today we have nothing to say, only what our memory we have. Otherwise we don't have a photo to say. Otherwise we have enjoyed a lot at Osmanabad.
1: Okay. सर, और जैसे कि आप लगभग हम 20 मिनट से बात कर रहे हैं तो आप पूरा इंग्लिश में इंटरव्यू कर रहे हो, शायद कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में और एक क्यूरियोसिटी का ऐसा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज बैरियर कितनी आती है करियर में लाइक इंग्लिश?
0: सर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट का कंसर्न लैंग्वेज का इतना इम्पैक्ट नहीं है. ओके. सी इन इंडिया नाउ गवर्नमेंट इज फोर्सिंग दैट यू शुड गो फॉर हिंदी.
1: ओके.
0: नथिंग रॉन्ग इन दैट. And the lecturers in our time also and today also, while explaining something, they take the help of Hindi also. Even before joining NALCO, I was doing some as a faculty in some year. So there also, we tried to explain something in Hindi because here what is happening, many people are from different places, all over India. So the North Indians can understand both Hindi and English, but the South Indians, they don't, even if they understand Hindi, they will not like to come out. So most of the places, English is still the medium, but I don't remember, due to government pressure, now they are shifting to even in our company. We got a pressure that everything we have to sign in Hindi. So, hum log maximum note sheet mein, hum log at least kuch ho na ho, at least name, signature, designation ko Hindi mein dalte.
1: Okay.
0: And batches office mein, we ensure that we are talking in Hindi.
1: Achha, okay.
0: But
1: सर सूर्यकांत मोहंती सर जी जैसे कि आप 1991 में पास आउट हो गए, 1987 में एडमिशन लिया था. ड्यूरिंग द ईयर आप जब आ रहे थे आज कॉलेज में, कैंपस में, तो कौन सा ऐसा गाना था जो आपके दिमाग में चल रहा था?
0: टुडे इनफैक्ट टुडे आई हैव पोस्टेड वन फोटो ऑफ माय एलुमनी वी हैड एट पनवेल रिसेंटली एंड आई हैड सांगे सॉन्ग. मैं कविता लिखा था हिंदी में, वो कविता को पेश किया था.
1: आज भी आपको करनी
0: होगी. कविता को पेश किया था एंड वो कविता को अगेन मैं उसका एक फोटो में पोस्ट किया था
1: जी.
0: तो फोटो में एक ही गाना मुझे याद आया, जाने कहाँ गए वो दिन.
1: अच्छा
0: इफ यू लाइक आई विल जस्ट रीड आउट द कविता.
1: या
0: स्मॉल एंड दैट कविता आई रोट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन द फ्लाइट.
1: Okay.
0: It was in the flight mode.
1: Okay.
0: So that time I wrote this song. ए मेरे दोस्तों, ए मेरे उस्मानाबाद की फसादियों, ना जाने चार साल में क्या जादू सा कर डाला, ये शरीफ सा लड़के को आज बोलना सिखा दिया.
1: अच्छा.
0: ये शरीफ सा लड़के को आज बोलना सिखा दिया. कुछ मेरे प्रोफेसर लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे दोस्तों के बारे में मैं कुछ अच्छे बुरे बोलूंगा आज. आप लोगों की इजाजत से मेरे दिल की बात पेश करूंगा. प्रोफेसर लोग बैठे थे उनके सामने, इन गाली गुलौज देना ठीक नहीं लगता. सो दैट वाज, कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, जिन्हें ना मिला किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट, ना हम किसी रईस परिवार से थे कि पढ़ सकते थे कर्नाटक की नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में. मजबूर होके हम चले आए थे ओसनाथ की उस झोपड़ी कॉलेज में, मजबूर होके हम चले आए थे ओस्मानाबाद की उस झोपड़ी कॉलेज में. कैसे बताएं हम कितने गधे थे, कितने नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने बेवकूफ थे. चार साल पढ़ाई के बाद जब हम घर लौटे थे, हमेशा एक ही सवाल आता था हमारे दिल में, क्या इस सर्टिफिकेट से मिल सकता है नौकरी, ना इसी को दिखा के कर सकते कुछ कमाई. फिर हम यह कह के दिल को तसल्ली दिया, चार साल में कुछ पाया या नहीं, बस एक ही चीज को लेके मैं उस्मानाबाद से निकला. वो था देश की छोटे बड़े शहरों की कुछ हमसे भी बड़े बदमाशों की दोस्ती. गर्व है मुझे आज भी उन्हीं लोगों का दोस्ती पर, इसीलिए चला आया भुवनेश्वर से मिलने आपसे, इसीलिए चला आया 1600 किलोमीटर दूर से मिलने आपसे. कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने बेवकूफ थे, कैसे बताएं हम कितने बदमाश थे. कैसे भूलूं मैं उस जनीर होटल की पूरी भाजी, सुबह शाम भूख लगते ही पहुंच जाते थे. कैसे भूलूं मैं बालाजी चपने की बड़ी स्क्रीन की रंगीन सिनेमा, हमारे एंटरटेनमेंट की वही तो एक ही सोर्स था. कैसे भूले हम मस्के सर पंखे सर को, कैसे भूले हम पाटिल सर कुलकर्णी सर को, कैसे भूले हम घालके सर देवना सर को. जो कोच भी हूँ आज सर, आप लोगों की दुआओं से भी हूँ, आप ही तो है जिन्होंने जमीन के ऊपर हम ही लोगों को खड़ा कराया. क्षमा चाहूंगा यहाँ बैठे कुछ प्रोफेसर साहब के नाम नहीं ले पाए, कुछ लोग थे जिनका नाम याद नहीं था एंड कुछ नए प्रोफेसर लोग भी. कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने बेवकूफ थे, कैसे बताएं हम कितने बदमाश थे. बस यही कह के मेरा कविता खत्म करूंगा. आप लोगों का ऐसा प्यार मोहब्बत बरकरार रहे, शुक्रिया अदा करूंगा उन्हीं दोस्तों का, उन्हीं प्रोफेसर लोगों का, जिन्होंने कुछ दिनों से दिल लगा के मेहनत करके हम सबको आज एक साथ कर पाया. जो लोग नहीं आए उन्हें अनुरोध करूंगा, ऐसे साथ मिलने का मौका बार बार नहीं आएगा, ऐसे साथ मिलने का मौका बार बार नहीं आएगा. धन्यवाद, लव यू ऑल, नमस्कार.
1: क्या बात है सर, यानी आपने इस कविता के अंदर तो पूरी जर्नी ही बता दी.
0: दिस मोस्टली कवरिंग में एंड इट्स ऑल रियल फैक्ट्स, देयर इज नो मसला, नथिंग. ओके, इट्स ऑल इन फैक्ट दोज थ्री वर्ड्स, गधे नालायक एंड बेवकूफ.
1: बट वो तो कॉलेज के दिन थे सर, कॉलेज के दिनों में तो सबको ही ऐसे होते.
0: ये जो तीन वर्ड है ये एक्चुअल वर्ड नहीं था मेरा, कुछ और वर्ड्स था जो सबके सामने बोलने पे मैं वहीं पे एडिट करके इसको डाला था कि यहाँ भी नहीं बोलूंगा उसको. एनीवे दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल.
1: तो सूर्यकांत मोहंती जी, अब फाइनल गोल्डन वर्ड्स ऐसे क्या कहना चाहोगे जो कि सबके लिए हो?
0: आई विल से दैट टू थिंग्स आई विल टेल, कि ओसना इंजीनियरिंग कॉलेज इज अ वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, डूइंग गुड, हैविंग लॉट ऑफ वेरी गुड प्रोफेसर्स. Only thing that they have to add on, let them invite सम ऑफ द एल्युमिनीज डूइंग वेरी गुड इन ओवरसीज एज वेल एज इन इंडिया इन गवर्नमेंट सेक्टर्स इन प्राइवेट सेक्टर्स एज ए कंसल्टिंग ए देर आर टू थिंग्स सी व्हेन अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम यू आस्क हिम टू कम टू फ्रॉम यूएसए टू दिल्ली ही विल कम बट व्हेन यू कॉल समबडी टू कम फ्रॉम यूएसए टू ओसोना द ट्रांजिट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ ए सो लेट सी एज फार एज अ गवर्नमेंट एज फार एज प्राइवेट इंजीनियर कॉलेज इज कंसर्न द बेस्ट in Odisha or in other places I've seen the maximum paid salary is to the not to the principal is to the person looking after the placement called as placement officer so what they're doing they're trying to get the people from different locations who can motivate you can find out some what cream and take it so here if college management will take this as a seriously calling the alumni students okay at least you make sure that you do something like they'll get what a bonus sort of thing ki hum log to aapke liye jana jana ka ye kar rahe hain aap aiye see ana jana ka flight charge is not important to him but he okay. will feel that I am important college wants my service okay so he'll rush to the yeah and he will not only give a class he will try to find out some people
1: yes.
0: whom he can absorb in his company
1: yes, yes
0: so
1: yes.
0: that is what is missing that is what is required for yeah, and that will attract many other people to come over here yes. on their own
1: yes
0: so I request the management to look into this aspect
1: yes yes एंड इट्स गुड सजेशन सर मैं भी मैनेजमेंट को ये इंटरव्यू के आपका जो सजेशन है वो टेक्स्ट मैसेज में अभी के जो हमारे MLA है राणा जगजीत सिंह पाटिल ट्रस्टी भी है तो उनको मैं सेंड कर दूंगा कि ऐसे भी कुछ रिक्वायरमेंट है शायद वो भी कुछ इसके अंदर कर सके लेकिन श्री सूर्यकांत मोहंती जी आपने इतने मतलब रश आवर्स में भी आपने कुछ वक्त निकाला और ये जो आपके एक्सपीरियंस शेयर किए ये बिल्कुल हम बोलते हैं कि इंस्पिरेशन है ये जब इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होगा तो आपको समझ में आएगा तो आपने जितना भी शेयर किया एक्सपीरियंस उसके लिए मैं रेडियो तेना की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना
0: चाहूंगा
1: थैंक यू आपण एकत्र रेडियो तेना 90.4 FM आपली माणसं आपला आवाज श्रोतेव रेडियो तेना ट्यून करा 90.4 FM वर किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ऍपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअर किंवा ऍप स्टोअर वर ही रेडियो तेना हे ॲप उपलब्ध आहे आपण रेडियो गार्डनवर ही रेडियो तेना ऐकू शकता किंवा http://radio.coe.usmanav.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडियो तेना आपण आमच्या फेसबुक पेज आणि इंस्टाग्रामला लाईक करा फॉलो करा तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970500 9970500900 ऐकत राहा आनंदी राहा रेडिओ तेना 90.4 FM आपली माणसं आपला आवाज

बच के रहना नटखट प्रेम कुमारी। इन गलियों में बच के रहना नटखट प्रेम कुमारी। इस बस्ती में रहते हैं सबके सब प्रेम पुजारी। चटक मटक के मत चलियो, कोई नमक लगा कर चख लेगा। चटकीली चटक जवानी को झट से अखियन में रख लेगा।

किए खंजर चलवाए कितने हिटलर आए, खंजर चलवाए कितने हिटलर आए, पर इश्क में पागल दीवानों को वो भी रोक न पाए। लहू दिलों का जब चाहत के रंगों में ढलता है, तब तक इस दुनिया में सुंदर ताजमहल बनता है।

0: ले जाए।
1: वोल्टास मैक्स क्लीन वॉशिंग मशीन, इसका डायनाबॉल पल्सेटर जिद्दी मैल को भी बाहर निकाले और बच्चों को बच्चे ही रहने दे।
0: मैक्स क्लीन हर दाग चूम ले जाए।

0: आप जब आ रहे थे आज कॉलेज में कैंपस में, तो कौन सा ऐसा गाना था जो आपके दिमाग में चल रहा था?
1: टुडे इनफैक्ट टुडे आई हैव पोस्टेड वन फोटो ऑफ माय एलुमनी वी हैड एट मैनुअल रिसेंटली एंड आई हैड सैंग ए सॉन्ग. मैं कविता लिखा था हिंदी में, वो कविता को पेश किया था.
0: आज भी आपको करनी
1: होगी. कविता को पेश किया था एंड वो कविता को अगेन मैं उसका एक फोटो में पोस्ट किया था
0: जी.
1: तो फोटो में एक ही गाना मुझे याद आया, जाने कहाँ गए वो दिन.
0: अच्छा
1: इफ यू लाइक आई विल जस्ट रीड आउट द कविता. इट्स स्मॉल एंड दैट कविता आई रोट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन द फ्लाइट. इट वाज इन द फ्लाइट मोड.
0: ओके.
1: सो दैट टाइम आई रोट दिस सॉन्ग. ए मेरे दोस्तों, ए मेरे उस्मानाबाद की फसादियों, ना जाने 4 साल में क्या जादू सा कर डाला, ये शरीफ सा लड़के को आज बोलना सिखा दिया.
0: अच्छा.
1: ये शरीफ सा लड़के को आज बोलना सिखा दिया. कुछ मेरे प्रोफेसर लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे दोस्तों के बारे में मैं कुछ अच्छे बुरे बोलूँगा आज. आप लोगों की इजाज़त से मेरे दिल की बात पेश करूँगा. प्रोफेसर लोग बैठे थे, उनके सामने इन गाली गुलौज देना ठीक नहीं लगता. सो दैट वॉज. कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, जिन्हें ना मिला किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट, ना हम किसी रईस परिवार से थे कि पढ़ सकते थे कर्नाटक की नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में. मजबूर होके हम चले आए थे ओसनाथ की उस झोपड़ी कॉलेज में, मजबूर होके हम चले आए थे ओस्मानाबाद की उस झोपड़ी कॉलेज में. कैसे बताएं हम कितने गधे थे, कितने नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने बेवकूफ थे. 4 साल पढ़ाई के बाद जब हम घर लौटे थे, हमेशा एक ही सवाल आता था हमारे दिल में, क्या इस सर्टिफिकेट से मिल सकता है नौकरी, ना इसी को दिखा के कर सकते कुछ कमाई. फिर हम यह कह के दिल को तसली दिया, 4 साल में कुछ पाया या नहीं, बस एक ही चीज को लेके मैं उस्मानाबाद से निकला. वो था देश की छोटे बड़े शहरों की कुछ हमसे भी बड़े बदमाशों की दोस्ती. गर्व है मुझे आज भी उन्हीं लोगों का दोस्ती पर, इसीलिए चला आया भुवनेश्वर से मिलने आपसे, इसीलिए चला आया 1600 किलोमीटर दूर से मिलने आपसे. कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने बेवकूफ थे, कैसे बताएं हम कितने बदमाश थे. कैसे भूलूं मैं उस जनीर होटल की पूरी भाजी, सुबह शाम भूख लगते ही पहुंच जाते थे. कैसे भूलूं मैं बालाजी चपने की बड़ी स्क्रीन की रंगीन सिनेमा, हमारे एंटरटेनमेंट की वही तो एक ही सोर्स था. कैसे भूले हम मस्के सर पंखे सर को, कैसे भूले हम पाटिल सर कुलकर्णी सर को, कैसे भूले हम घालके सर देवना सर को. जो कोच भी हूँ आज सर, आप लोगों की दुआओं से भी हूँ, आप ही तो है जिन्होंने जमीन के ऊपर हम ही लोगों को खड़ा कराया. क्षमा चाहूंगा यहाँ बैठे कुछ प्रोफेसर साहब के नाम नहीं ले पाए, कुछ लोग थे जिनका नाम याद नहीं था, कुछ नए प्रोफेसर लोग भी. कैसे बताएं हम कितने गधे नालायक थे, कैसे बताएं हम कितने बेवकूफ थे, कैसे बताएं हम कितने बदमाश थे. बस यही कह के मेरा कविता खत्म करूंगा. आप लोगों का ऐसा प्यार मोहब्बत बरकरार रहे, शुक्रिया अदा करूंगा उन्हीं दोस्तों का, उन्हीं प्रोफेसर लोगों का, जिन्होंने कुछ दिनों से दिल लगा के मेहनत करके हम सबको आज एक साथ कर पाया. जो लोग नहीं आए उन्हें अनुरोध करूंगा, ऐसे साथ मिलने का मौका बार बार नहीं आएगा, ऐसे साथ मिलने का मौका बार बार नहीं आएगा. धन्यवाद. लव यू ऑल. नमस्कार.
0: क्या बात है सर, यानी आपने इस कविता के अंदर तो पूरी जर्नी बता दी.
1: दिस मोस्टली कवरिंग में इट्स ऑल रियल फैक्ट्स, देयर इज नो मसला, नथिंग. ओके. इट्स ऑल इनफैक्ट दोज 3 वर्ड्स, गधे नालायक एंड बेवकूफ.
0: बट वो तो कॉलेज के दिन थे सर, कॉलेज के दिनों में तो सबको ही ऐसे होते.
1: ये जो 3 वर्ड है ये एक्चुअल वर्ड नहीं था मेरा, कुछ और वर्ड्स था जो सबके सामने बोलने पे मैं वहीं पे एडिट करके इसको डाला था कि यहाँ भी नहीं बोलूंगा उसको. एनीवे दैट वाज अ डिफरेंट ये एक्सपीरियंस ऑल्टो.
0: तो सूर्यकांत मोहंती जी, आप फाइनल गोल्डन वर्ड्स ऐसे क्या कहना चाहोगे जो कि सबके लिए हो?
1: आई विल से दैट टू थिंग्स आई विल टेल, कि उस्मानाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज इज अ वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, डूइंग गुड, हैविंग लॉट ऑफ वेरी गुड प्रोसेस. Only thing that they have to add on, let them invite some of the alumni doing very good in overseas as well as in India, in government sectors, in private sectors, as a consulting. There are 2 things. See, when a person is coming from, you ask him to come to from USA to Delhi, he'll come. But when you call somebody to come from USA to Osuna, the transit is making a lot of way. So let, see, as far as the government, as far as the private engineering college is concerned, the best in Odisha or in other places I've seen, the maximum paid salary

0: is to the, not to the principal, is to the person looking after the placement, called as placement officer. Okay. Mm. So what they're doing? They're trying to get the people from different locations who can motivate, who can find out some word, cream and take it. So here, if college management will take this as a seriously, calling the alumni students, okay, at least you make sure that you do something like, they'll get what a bonus sort of thing ki hum log to aapke liye aana jana ka ye kar rahe hai aap aaiye. See, aana jana ka flight charge is not important to him, but he will feel that I am important, college wants my service. Okay. So he'll rush to the and he will not only give a class, he will try to find out some people whom he can observe in his company.
1: Yes.
0: That is what is missing, that is what is required for and that will attract many other people to come over here on their own.
1: Yes.
0: So I request the management to look into this as well.
1: Yes. And it's good suggestion, sir. मैं भी मैनेजमेंट को ये इंटरव्यू के आपका जो सजेशन है वो टेक्स्ट मैसेज में, अभी के जो हमारे एमएलए है राणा जगजीत सिंह पाटिल, ट्रस्टी भी है, तो उनको मैं सेंड कर दूंगा कि ऐसे भी कुछ रिक्वायरमेंट है, शायद वो भी कुछ इसके अंदर कर सके. लेकिन श्री सूर्यकांत मोहंती जी, आपने इतने मतलब रश आवर्स में भी आपने कुछ वक्त निकाला और ये जो आपके एक्सपीरियंस शेयर किए, ये बिल्कुल हम बोलते हैं कि इंस्पिरेशन है. ये जब इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होगा तो आपको समझ में आएगा. तो आपने जितना भी शेयर किया एक्सपीरियंस, उसके लिए मैं रेडियो तेना की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा.
0: थैंक यू.
1: आणि आपण ऐकत रहा रेडिओ तेना 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज. श्रोतेव रेडिओ तेना ट्यून करा 90.4 FM, किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ॲपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरवरही रेडिओ तेना हे ॲप उपलब्ध आहे. आपण रेडिओ गार्डनवरही रेडिओ तेना ऐकू शकता, किंवा http://radio.coe.usmanav.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तेना. आपण आमच्या फेसबुक पेज आणि इंस्टाग्रामला लाईक करा, फॉलो करा. तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा. त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970-5900, 9970-5900. ऐकत रहा आनंदी रहा रेडिओ तेना 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज.

0: जीना तो चाहता हूँ लेकिन प्यार में।
1: तो फिर मरना चाहते होगे?
0: हाँ लेकिन वो भी प्यार में।

0: खुल्ला प्यार हो यार, अगर दिलदार हो खुल्ला खुल्ला प्यार हो, नजरों में खेल हुआ दिलों का मेल हुआ, नजरों में खेल हुआ दिलों का मेल हुआ, बाहों में अजाना
1: बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुलाए बुल

तेरी बेटी क्या चाहती है और तू उसे क्या दे रहा है। तू बाप है या मेरा व्यापारी है? ये तेरी बेटी है बेईमान, ये नोटों की कोई गड्डी नहीं है जिसे तू सुधीर भाई के काले धंधों में लगाने की सोच रहा है। क्या बेटी के सुख की कोई अहमियत नहीं? जरा देख, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये फूल से बच्चे तो सुधीर भाई को ललकार सकते हैं, एक तू है जो अपनी जान बचाए खड़ा।

मस्ताने ओ जानी जरा नजरें मिला ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके हट तेरा रंग